0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद

0: जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।

7:06 है स्टूडियो की घड़ी का समय। 100.1 FM गोल्ड पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शर्मिष्ठा है आप सभी श्रोताओं के साथ। जी हाँ, वादे के मुताबिक फिर एक बार एक नई सुबह के साथ हाजिर हो चुकी है, आप सभी श्रोताओं के बीच पहुंच चुकी है लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, सिर्फ एक नई सुबह की शुरुआत ही नहीं हो रही है बल्कि एक नए महीने की शुरुआत भी हो रही है आज से। जी हाँ, सितंबर का पहला दिन है आज, और चलिए मैं और आप हम सभी मिलकर करते हैं महीने के पहले दिन की शुरुआत। और कार्यक्रम, जी हाँ, हिंदी कार्यक्रम भी सबसे पहला कार्यक्रम रही होता है, तो चलिए पहले महीने में पहले दिन पहला कार्यक्रम हम सभी मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। और जैसे कि अलग अलग विषयों से लैस होता है ये कार्यक्रम, तो बातें होंगी बहुत सी अलग अलग विषयों को।

लेकर जानकारी दूंगी आपको आज के दिन को लेकर। जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, पूरे 8 बजे तक बातें होती रहेंगी। लेकिन उससे पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से सुना आपने इस गीत को, जो कि कार्यक्रम का सबसे पहला गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया था ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और भीगा भीगा मौसम है। जी हाँ, कल रात से बारिश जो है वो होती चली जा रही है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम। जी हाँ, सुबह सुबह जब हम काम पर निकल रहे होते हैं और ऐसे में बरसात जब चल रही होती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है ना। लेकिन इसके बावजूद ये जो सुंदर सा सुहाना सा मौसम है, इसे एंजॉय करने का भी मन करता है ना। लेकिन कई बार ये सोचकर हम रुक जाते हैं कि भाई काम पर जाना है, कपड़े वगैरह जो है ख़राब अगर हो गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही सारी बातें सोचकर उसके बाद बरसात को एंजॉय करने वाली जो बात है उससे हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और यही सोचकर आगे बढ़ते चले जाते हैं कि भाई बरसात हो रही है, होने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद बरसात में ही चलते फिरते हमें अपने गंतव्य तक, हमें अपने काम पर तो सही समय पर पहुंचना ही है। तो चलिए, बरसात अपने रफ्तार से होती रहे, हम भी अपनी रफ्तार से चलते रहें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को देते हैं एक रफ्तार और रुख करें एक फिल्मी गीत की ओर। फिलहाल अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में सुनिए ये गीत। सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह।

शावर स्टडी फिल्म से सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से गीत को, जिसमें आवाज थी अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की। 7:15 होने को है और संग है आप सुबह के इस खूबसूरत कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है सुहानी सुबह, जिसमें बातें होती हैं बहुत सी अलग अलग विषयों को लेकर और ख़ासकर आज के दिन को लेकर, आज के इतिहास को लेकर भी बहुत सी बातें साझा करते हैं हम आप सभी श्रोताओं के साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे तो ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम के मिजाज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं और बताऊं कि अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आखिर आज के मौसम को लेकर क्या कहा जा रहा है और किस तरीके की तैयारी के साथ आप आज सुबह सुबह जब अपने घर से निकलेंगे अपने काम के लिए, तो फिर आपकी तैयारी मौसम को लेकर किस तरह की होनी चाहिए। तो अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आज के दिन के लिए कहा जा रहा है कि आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, कभी कभार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रह सकता है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 31.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 0.9 डिग्री कम रहा, और न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था 26.7 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक। अधिकतम आर्द्रता 97% और न्यूनतम आर्द्रता 78% रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 24 घंटों में बारिश बिल्कुल हुई है और उसे भी रिकॉर्ड किया गया है, और बारिश रही 21.0 मिलीमीटर। और सबसे अच्छी बात आज के दिन के लिए और आने वाले समय के लिए फिलहाल यही है कि मछुआरे भाइयों के लिए कोई भी सतर्क वार्ता नहीं दी जा रही है। तो ये तो थी मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली जानकारी आज के मौसम के मिजाज को लेकर, यानी कि मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा हल्का फुल्का है, यानी कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बरसात होगी या फिर कम बरसात होगी, खैर ये सारी बातें ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जब बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की या फिर कभी कभार तेज़ बरसात हो सकती है, और भाई बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में बरसात ना हो तो कब हो, है ना, और बरसात के मौसम में बरसात अगर ना ही हो तो फिर बरसात का मज़ा कैसा, है ना। तो चलिए इस मौसम का मज़ा आप उठाते रहिए सुबह सुबह, और फिलहाल मैं सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना। इस तराने को सुनने के बाद आज के दिन को लेकर करेंगी थोड़ी सी बातें।

7:26 सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ाते हैं और बताऊं आपको आज के खास दिन को लेकर। आज के खास दिन याद कराया जाता है आपके खान पान के बारे में। जी हाँ, आप हर रोज सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना खाते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें पोषण ठीक ठाक तरीके से है या नहीं। जी हाँ, सुबह उठकर जब आप नाश्ता करते हैं और उसके बाद पूरे दिनचर्या में आप जो भी खाना पीना आप लेते हैं उसमें ठीक तरीके से न्यूट्रिशन है या नहीं, इसका ख्याल रखने के लिए ही आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, और सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि पोषण को ध्यान में रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा सप्ताह पोषण के नाम किया गया है, और इसीलिए तो न्यूट्रिशन वीक के तौर पर पूरा सप्ताह मनाया जाता है। और आपको बताऊं कि ये पूरा सप्ताह आखिर शुरू कब से लेकर कब तक होता है, तो सितंबर के पहली तारीख से, यानी कि आज के दिन से शुरुआत होती है न्यूट्रिशन वीक की और चलता है पूरे सितंबर के 7 तारीख तक। जी हाँ, ये पूरा सप्ताह लोगों को याद कराया जाता है कि आप पूरे दिन भर में जो भी खा पी रहे हैं उसमें पोषण ठीक ठाक तरीके से है या नहीं, और अगर पोषण ठीक ठाक तरीके से है तभी तो आपके शरीर का, आपके परिवार के लोगों का जो शरीर का जो ग्रोथ है, जी हाँ, वो ठीक ठाक तरीके से हो पाएगा। और भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की अगर बात करूँ तो इस साल 2026 में इसे मनाया जा रहा है, आज से लेकर पूरे 7 तारीख तक, और हर साल की तरह इस बार भी इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और इस सप्ताह को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य

है वो यही है कि संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान की आदतें और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। महत्व यही है कि ये सप्ताह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए सही पोषण के महत्व को समझाता है। और इस सप्ताह के मुख्य कार्यक्रमों की अगर बात करें तो स्कूल और संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और दैनिक भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और हरी सब्जियों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। जंक फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से हर किसी को थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए भी कहा जाता है और इस तरीके से मनाया जाता है न्यूट्रिशन वीक आज से लेकर पूरे 7 तारीख तक। और ये तो रही खान पान की बात जिसे हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे दिन भर में हम जो भी खाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर सुबह के समय। जी हाँ, सुबह के समय हम जो नाश्ता कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसी पर आधारित होता है हमारा पूरा दिन। अगर सुबह का खाना हम ठीक ठाक तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि पौष्टिक खाने की ओर हमारा ध्यान नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर रोज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पूरे दिनचर्या में तो ठीक है, लेकिन खासकर सुबह का समय जब ठीक ठाक तरीके का खाना खाते हैं तो इसका असर जो है वो आपके शरीर पर पड़ता है। और अगर आपका शरीर ठीक ठाक रहता है तो आपका दिलो दिमाग भी शांत रहता है, और शांत दिलो दिमाग से आप न जाने कितनी ही अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं, कर पाते हैं, है ना। तो चलिए, खान पान की बात तो हुई, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ को लेकर भी बात करना चाहूँगी। जी हाँ, आज के दिन मनाया जाता है इस दिन को, और वो है माफ़ कर देने वाला दिन। जी हाँ, फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये है ना। गलतियाँ तो हम सभी करते हैं, लेकिन बड़ा तो वही होता है जो माफ़ कर सकता है, है ना। तो चलिए, बात होगी माफ़ी को लेकर, लेकिन फ़िलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

हाँ तो मैं बात कर रही थी माफ़ी की। नेशनल फॉरगिवनेस डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, वैश्विक क्षमा दिवस नाम दिया गया है। हर साल वैसे तो 7 जुलाई को मनाया जाता है इस दिन को, जबकि कुछ देशों में राष्ट्रीय क्षमा दिवस 1 सितंबर को या फिर अन्य तारीखों में भी मनाया जाता है। लेकिन ज़रूरी बात यही है कि इस दिन को अर्थात नेशनल फॉरगिवनेस डे को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है। जी हाँ, तारीख चाहे जो भी हो, पुराने गिले शिकवे और नाराज़गी को भूलकर रिश्तों में मिठास लाना, मानसिक शांति पाना और क्षमा के महत्व को समझना। जी हाँ, ये एक छोटी बात ज़रूर होगी, लेकिन माफ़ करना या फिर माफ़ी मांगना ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, गलतियाँ तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जब हम माफ़ी मांग लेते हैं या फिर कोई हमें माफ़ कर देता है, तो इससे बड़ा जो सुकून है वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है ना। और महत्व की अगर बात करें तो क्षमा करने से मन का बोझ कम होता है और समाज में सकारात्मकता, सहानुभूति और प्रेम की भावना भी बढ़ती है। और तभी

तो जब भी हम कोई गलती करते हैं या फिर आपको लगे कि आपने कोई गलती कर ही ली है, जी हाँ, इंसान मात्र से ही गलती होती है, और गलती अगर आपने की है तो फिर भला माफ़ी मांगने में एक छोटा सा शब्द है, जी हाँ, सॉरी, इसे बोलने में कोई हर्ज तो नहीं है, है ना, बल्कि इस छोटे से शब्द को जब हम बोल देते हैं तब ऐसा लगता है ना कि हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, और जब सामने वाला हमें माफ़ कर देता है तो उस वक्त जो खुशी, वो जो चैन हमें मिलता है, उसकी तो खैर क्या ही बात कहें, ऐसा लगता है जैसे परम शांति हमें मिल गई हो माफ़ी लेकर, और जो माफ़ी देता है उसके बारे में क्या ही कहें, जी हाँ, दिल उसका इतना बड़ा होता है उस इंसान का जो आपको माफ़ कर देता है और खुले दिल से ये कहना चाहता है कि हमने तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ़ किया, और फिर से, जी हाँ, फिर से वही पुराना जो रिश्ता है हमारे बीच में, जो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी टकराव की वजह से उसमें दरारें आ रही थी, बस एक छोटा सा शब्द सॉरी या फिर हमने माफ़ किया, चलो हमने माफ़ किया, इस बात को कहकर दोनों के बीच में जो अनबन बनी हुई थी उसमें फिर एक बार जुड़ाव आ जाता है। तो ये तो है माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने वाली बात। तो चलिए, फिलहाल अगर बॉलीवुड में गीत संगीत की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे लेकर बॉलीवुड की दुनिया में गीतों को ना बनाया गया हो। तो जी हाँ, माफ़ी को लेकर भी बहुत से गीत बन चुके हैं, जी हाँ, गीत लिखे जा चुके हैं, संगीत दिया गया है, और कोमल आवाज़ से उन गीतों को गाया भी गया है। तो चलिए, फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाना चाहूँगी आशा भोंसले की आवाज़ में।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सात बजकर 45 मिनट है, स्टूडियो घड़ी का समय 100.1 FM गोल्ड पर। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और चलिए सुहानी सुबह कार्यक्रम में अब एक ऐसी चीज़ को लेकर बात करते हैं जो कि लुप्त प्राय हो रही है, यानी कि डिजिटल युग की वजह से हमने उस चीज़ को खो दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी हाँ, एक ज़माना था जब उस चीज़ के ज़रिए अपने एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, और लोग इस आशा में रहते थे कि हमने जो संदेश भेजा है हमारे प्रियजनों को, उसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हाथ से लिखे हुए चिट्ठी की ही मैं बात कर रही हूँ जिसे डिजिटल युग में हम सब ने खो दिया है। अब संदेश सिर्फ और सिर्फ मैसेज कह लीजिए, टेक्स्ट कह लीजिए, सिर्फ इन चीज़ों के माध्यम से ही हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, लेकिन क्या इन मैसेजेस में वो लगाव है जो लगाव हम हाथ से लिखे हुए चिट्ठियों में पाते थे? शायद नहीं, है ना। आज भी ज़्यादातर घरों में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ अगर हम ढूंढें तो मिल ही जाएंगी, और जब उन पुरानी चिट्ठियों को हम खोलते हैं, जब उन पुरानी चिट्ठियों को खोलकर हम थोड़ा सा हाथ फहराते हैं, तब ऐसा लगता है ना कि जिस इंसान ने हमें वो चिट्ठी भेजी है वो इंसान हमारे आसपास ही है, हमारे करीब ही है, और उनके हाथ की लिखावट के आखिर क्या ही कहने। जी हाँ, फिर से हम उसी फ्लैशबैक वाले समय में चले जाते हैं जिस वक्त ये चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और एक दूसरे को हमारे दिल की बात हम साझा करते थे। तो उन्हीं दिनों को याद करने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। डिजिटल युग के कारण कई परंपरागत कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है।

और इनमें हाथ से लिखे हुए पत्र लेखन जो कला थी वो भी शामिल है। पत्र लेखन के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए और इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग कभी भी भूल नहीं सकते, चाहे लोग कितना ही डिजिटल माध्यम को अपना ले, लेकिन इसके बावजूद पत्र लेखन की जो कला थी, जो खूबसूरती थी, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। और चाहे जितना भी हम आज के समय में एक दूसरे को टेक्स्ट कर लें, ईमेल कर लें और दिल की बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिखकर आदान प्रदान भले ही कर लें, लेकिन दिल से नहीं भरता है ना। जी हाँ, जिस तरीके से हम दिल की बात को पन्ने में उतार कर, जी हाँ, चिट्ठियाँ लिखते थे और उसमें ना एक बहुत सुंदर सी कला थी, लिखने की कला। जी हाँ, आप किसी भी बात को लिखने से पहले कई बार सोचते थे कि किस तरीके से लिखें, क्या नहीं लिखें, और ख़ासकर शब्दों का चयन। जी हाँ, शब्दों के चयन के साथ खूबसूरती से आप अपने दिल की बात चिट्ठी में लिख दिया करते थे अपनों के लिए। और उस डाकिये का क्या, जी हाँ, वही डाकिया जो आपके प्रियजन का संदेश लेकर आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होता था और आपको बुलाकर आपके हाथ में वो संदेश देकर चला जाता था, है ना। तो वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों में वो समय आज भी बसा हुआ है। तो चलिए, ये समय कुछ ऐसे समय हैं जो कभी भी लोगों के दिलों से नहीं हट सकते। तो फिलहाल किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

7:55 होने को हैं और चलते चलते आज के दिन के इतिहास को लेकर बात करती चलूँगी। और आज के इतिहास की अगर बात करें तो जापान में बनी इंडियन नेशनल आर्मी 1 सितंबर को ही त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था। और चलिए आगे बढ़ते हुए बताऊँ आपको कि आज के दिन के इतिहास में आखिर क्या क्या घटा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। यह 21 अक्टूबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से आज़ाद भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी। कई देशों ने इसे मान्यता भी दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन 1942 में अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। जापान में इस फौज की स्थापना भारत के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के लिए जापान ने काफ़ी सहयोग भी किया था। इसमें करीब 82,000 सैनिक शामिल थे जिसमें एक महिला यूनिट भी थी। इस फौज में वे लोग शामिल किए गए थे जिन्हें जापान ने बंदी बना दिया था। बाद में बर्मा और दूसरे देशों में मौजूद भारतीय भी इसमें शामिल हो गए थे। आगे चलते हुए 1909 की अगर बात करें तो प्रसिद्ध साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा 1942 की बात जैसे कि मैं कर रही थी, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी आज ही के दिन। 1956 की बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसी साल भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना भी की गई थी। 1962 की बात करें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दिन था आज ही का। इसी के साथ आज के दिन के इतिहास को हम बात कर रहे थे और कार्यक्रम को भी समाप्त करने का समय हो चला है। जी हाँ, शुरू की घड़ी बता रही है कि 7:55 से अधिक का समय हो चला है और आज के इस कार्यक्रम को करते हैं यहीं पर समाप्त। जाने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए मिलूंगी बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा। समय रहेगा 11:10।

0: बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर दे। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
5: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
2: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
6: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
6: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत

0: परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स

के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में

0: निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्व गुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है। INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
2: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, Ms. PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: Prime Minister Modi also held

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है SCO के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी संगठन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के लिए SCO प्रमुख देशों के साथ सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, संपर्क और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री जोशी ने NCERT को भारत की स्कूली शिक्षा की आधारशिला और युवा मस्तिष्कों की पीढ़ियों को संवारने वाला एक अहम संस्थान बताया। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है।

0: एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मैच में सिंगाम्योम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year, compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Prime Minister Narendra Modi has said that India's economic growth of 7.8% is a reflection of hard work and collective resolve of 140 crore in citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said, India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic. He said, in order to maintain this growth, it is important to become Atmanirbhar Bharat. The Prime Minister urged the citizens to adopt Swadeshi, promote vocal for local and support Made in India products. Mr. Modi also urged the citizens to restrict foreign travel, avoid planning weddings in foreign countries and not buy gold if not necessary. Mr. Modi expressed confidence that if all the citizens adopt the practice of Swadeshi, the vision of Viksit Bharat will be achieved on the 100 years of independence. India has strongly rejected a ruling by the World Bank Constituted Court of Arbitration over the Indus Waters Treaty, rejecting the tribunal's authority and calling its decision legally invalid. In a social media post, the Ministry of External Affairs said India has never recognized the arbitration panel, did not participate in its proceedings and would not be bound by its rulings. New Delhi also reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. According to Nepal's Disaster Management Authority, 939 people have died and 3,925 are missing, including 592 foreign nationals. So far, 279 people have been rescued from hydropower sites, while more than 11,000 people have been rescued across the country. The month-long population enumeration in snowbound areas of Jammu and Kashmir will begin today and will continue till September 30th, with enumerators set to physically visit households to record details in 16 districts of the Union Territory. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh today. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Bihar, eastern Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand and parts of northeast India for the day. Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 21-year Argentine career that included a World Cup triumph, two Copa America titles and a record 207 appearances for his country. The 39-year-old revealed the decision in a social media post. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पनबिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल का शानदार करियर समाप्त। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति

0: एजेंसी आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी

0: गति से प्रगति कर रहा।
1: इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
2: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
3: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
4: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेज प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
5: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप और 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही उनके 21 साल के शानदार करियर का समापन हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 वर्ष का शानदार करियर समाप्त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है SCO के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के

0: 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश हो सकती है। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The 26th annual summit of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, begins today in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. The summit has been held to mark the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. The theme of this year's SCO summit is 25 years of the SCO, together towards sustainable peace, development and prosperity. The SCO has 10 member countries including India, China and Russia. India has been a full member of the SCO since 2017. Prime Minister Narendra Modi will address the SCO summit today. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:10 है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिशा हाजिर हो चुकी है अपना आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 एफएम गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद और बात करूँगी आज के इस कार्यक्रम में किसी खास को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करना चाहूंगी जिनकी खूबसूरती

का जादू चलना शुरू हुआ 1960 के अंत से लेकर पूरे 70 के दशक तक। उनके खूबसूरती और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि बेहतरीन अभिनय को भी लोगों ने देखा था। जी हाँ, बात कर रही हूँ अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर के बारे में और उनसे जुड़ी बहुत सी बातें, उनके फिल्मी करियर को लेकर भी होंगी बहुत सी बातें आज के इसी कार्यक्रम में। तो जुड़ी रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, साथ रहेगा इस कार्यक्रम का पूरे 12 बजे तक।

महबूब की मेहंदी फिल्म से सुन रहे थे आप किस गीत को, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। 11:18 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस कड़ी में बात हो रही है अभिनेत्री लीना चंदावरकर को लेकर। बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। लीना चंदावरकर भी उन्हीं नामों में शामिल है। 60 के दशक के आखिर में और 70 के दशक में उनकी खूबसूरती और सादगी का जादू ऐसा चला कि वे उस दौर की चर्चित अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी। को स्टार्स की अगर बात करें तो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी जिंदगी की अगर बात करें तो जिंदगी की जो कहानी है सिर्फ फिल्मों की चमक दमक तक सीमित नहीं रही। निजी जिंदगी में उन्हें ऐसे उतार चढ़ाव देखने पड़े जिन्हें किसी फिल्मी कहानी से कम आंका नहीं जा सकता।

लीना चंदावरकर के फिल्मी करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो साल 1968 में उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका टाइटल दिया गया था मन का मीत, और इसी फिल्म के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू की शुरुआत की थी। उनके बाकी चर्चित फिल्मों की अगर बात करें तो लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक जाने माने फिल्मों का नाम तो हम ले ही सकते हैं। 1970 में आई थी फिल्म हम जुले, इसके बाद 71 में महबूब की मेहंदी, और उसी साल जाने अनजाने रिलीज हुई थी, और उसके बाद 1973 में अनहोनी जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, और ये साबित भी उन्होंने किया कि बाकी अभिनेत्रियों से किसी भी मामले में उनका अभिनय कह लीजिए, उनकी खूबसूरती कह लीजिए, कम आका नहीं जा सकता।

उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर।

11:35 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेटी दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री लीना चंद्रवरकर को लेकर और उनके फिल्म सफ़र को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ छोटी मोटी मगर मजेदार बातें आप सभी श्रोताओं के साथ साझा की जा रही है। तो लीना चंद्रवरकर का जो परिवार था कोंकणी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था और उनके पिता सेना में अधिकारी थे। उन्हें फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया में आने की कोई खास चाहत नहीं थी, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो तो होना ही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था आज की हमारी अभिनेत्री के साथ और किस्मत उन्हें धीरे धीरे कैमरे के सामने लेकर आ गई और एक के बाद एक उनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले लीना ने विज्ञापनों में काम किया था। इसके बाद उन्होंने देश भर में आयोजित फिल्म फेयर फ्रेश फेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उप विजेताओं में शामिल हुई। यहीं से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलने लगे थे और उसके बाद बात करूंगी कि किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और किस तरीके से एक के बाद एक फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। फिलहाल फिल्मी गीत

ग्यारह बजकर बाले जी 42 मिनट और आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर को लेकर। 70 का दशक उनके करियर का सबसे खास दौर साबित हुआ। वे एक के बाद एक बड़े सितारों के साथ पर्दे पर नजर आई। महबूब की मेहंदी में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया और इस फिल्म में उनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। उस समय राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और उनके साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के करियर के लिए बहुत बड़ी बात थी। लीना ने धर्मेंद्र के साथ रखवाला और एक महल हो सपनों का जितेंद्र के साथ उन्होंने किया था। इस तरीके से बहुत से अलग अलग फिल्मों में उन्होंने अलग अलग को स्टार्स के साथ सफल फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों के दिलों में लीना ने अपने अभिनय की बात कर लीजिए या फिर सुंदरता की बात कर लीजिए एक अलग ही छाप छोड़कर रखी थी। और इन फिल्मी गीतों के जरिए आज भी आज की हमारी अभिनेत्री उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही जवां है और अगर हो सकता, अगर लोगों का बस चलता तो फिर से उस दौर की खूबसूरत अभिनेत्री को पर्दे पर वे देखना चाहते। तो चलिए फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। लो आगे उनकी याद कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

लीना चंदावरकर शादी के बंधन में बंधने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया। फिल्मी दुनिया से भले ही वे दूर रही हों, लेकिन मनोरंजन की दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास वे हमेशा कराती रही हैं और टेलीविज़न में आने वाले रियलिटी शोज़ में जज के तौर पर भाग लेते हुए अपनी प्रेजेंस का एहसास उन्होंने हमेशा दिलाया। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। बात हो रही थी खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर को लेकर। फिर एक बार बात होगी इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा, जी हाँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे आपकी अपनी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ कार्यक्रम लो आगे, उनकी याद पेश कर रही थी आप सभी श्रोताओं के लिए। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया था 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण आप सुन पाते हैं। और थोड़ी ही देर में बस समय रहेगा 12 बजे, लेकर आऊँगी फिर से आप सभी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम सुरभि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said terrorism is not merely a threat to the security of individual countries, but a shared challenge for all humanity. He said no country, society or citizen can consider itself immune from terrorism. Mr. Modi made these remarks while addressing the 86th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, in Bishkek. He said India's approach and policy towards the SCO are based on three key pillars, which are security, connectivity, and opportunity. Mr. Modi noted that security, peace, and stability form the foundation of every nation's development. The Prime Minister noted that terrorism, separatism, and extremism remain major challenges on this path. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period in the previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said the Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई है चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है
2: The Enforcement Directorate ED is conducting searches at seven locations across Chhattisgarh in connection with the alleged Chhattisgarh Public Service Commission recruitment scam. Sources at the ED said the searches include the residence of K.K. Chandrakar, personal assistant to former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, among other premises. The Gobardhan Central Sector Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees, has come into effect from today. It marks a major step towards scaling up the production and use of compressed biogas in India. The scheme will be implemented till 2035-36 and will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. The scheme aims to increase domestic compressed biogas production nearly tenfold, mobilize large-scale private investment, and create a vibrant circular bioeconomy across the country. The Union Cabinet had approved the scheme on the 6th of last month. Indian Railways has approved 170 crore rupees for Kavach 4.0 on the remaining 712 route kilometers of Moradabad Division Northern Railway. The Railways Ministry said the approved work will strengthen the division's railway safety infrastructure through deployment of the indigenous automatic train protection system. The Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. The embassy said, as per the government of Nepal, several steps are required for handing over the mortal remains of foreign nationals. These include documentation of the mortal remains, recording photographs and details, post-mortem examination, verification of the cause of death, formal identification, collection of fingerprints. Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and were trading on a positive note in the forenoon session today. The Sensex gained 198 points to 77,155, while the Nifty added 36 points to 24,116 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. More from our correspondent.
3: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, wars and conflicts are not a solution to any problem and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister said, India supports all efforts that connects markets, facilitate trade and open new avenues for development. However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
2: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
4: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई है चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है
2: Union Minister Nirmala Sitharaman has said India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed. In an interview, Ms. Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. She also highlighted India's recorded growth of 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today held a meeting with his German counterpart, Carsten Schneider, in New Delhi. The meeting was held on the sidelines of the 4th Indo-German Environment Forum. During the meeting, both sides had extensive discussion on matters related to industrial decarbonization and biodiversity conservation, with particular focus on wetland conservation. In a social media post, Mr. Yadav said the forum is opportune as the partnership between India and Germany continues to witness an unprecedented upward trajectory. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will inaugurate the hub and spoke international flight operations at the Sardar Vallabh Bhai Patel International Airport in Ahmedabad this evening. The inaugural Easy Connect service, operated by Air India's flight AI-1121, will depart from Ahmedabad, carrying passengers connecting through Delhi to several global destinations. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. Akashwani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin.

0: in India and across the world to access its programs anytime, anywhere. This is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand and parts of northeast India till tomorrow. Heavy rainfall continues across Jharkhand, posing a risk of flooding in several parts of the state. The Met Department has issued orange and yellow alerts for several districts and warned of possible flash floods over the next 24 hours. We have a report.
2: According to IMD Ranchi, cloudy conditions with moderate to heavy rainfall and thunder showers are likely across most parts of Jharkhand today. The department has also warned of a low to moderate risk of flash floods across all districts over the next 24 hours, with waterlogging possible in saturated soils and low-lying areas. An orange alert has been issued for Garhwa, Palamu, Latehar, Lohardaga, Gumla, Simdega and West Singhbhum for heavy to very heavy rainfall. Meanwhile, in Jamshedpur, the water levels of the Kharkai and Subanrekha rivers are rising rapidly due to continuous rainfall and water being released from dams. According to the flood control cell, the Kharkai is flowing 2.52 meters above the danger mark, while the Subanrekha has also crossed the danger level. In Palamu's Husainabad, residents living along the Son River, including farmers and livestock owners, have been advised to remain alert as the river water level continues to rise. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Benchmark domestic equity indices slipped into the negative zone in the afternoon session today. The Sensex fell 43 points to 76,915, while the Nifty was down by 51 points to 24,030 when reports last came in. World number one Aryna Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh, extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या

का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि

0: जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर

0: किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक

0: वाहन में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। इसके अलावा रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3925 लोग लापता हैं। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. A report.
1: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, "Wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy." The Prime Minister said, "India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development." However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
3: Alongside the 25th anniversary Bishkek Declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. Besides the declaration, four MOUs and over 20 decisions and statements were adopted at the summit. Meanwhile, the Prime Minister has departed from Bishkek. Union Home Minister Amit Shah has said the Sashastra Seema Bal SSB is playing a highly commendable role in humanitarian aid and rescue operations during the Nepal tragedy. In his written message on the investiture ceremony of SSB, Mr. Shah said in times of crisis, the swift, coordinated and sensitive action taken by the SSB serves as a living embodiment of its motto, service, security and brotherhood. Indian Railways has approved 170 crore rupees for Kavach 4.0 on remaining 712 route kilometers of Moradabad Division Northern Railway. The Railways Ministry said the approved work will strengthen the division's railway safety infrastructure through deployment of the indigenous automatic train protection system. It said the implementation of Kavach 4.0 will provide an advanced safety layer for train operations across the identified sections. The death toll from the devastating flash floods in Nepal rose to 987 today, with security forces recovering more bodies from 8 districts of the country, officials said. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. Around 4,000 people, including 583 foreigners and several security personnel, still remain missing, while nearly 12,000 have been rescued, the National Disaster Risk Reduction and Management Authority said. Akashvani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1st, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. We have more from our correspondent.
4: Over the years, FM Gold has evolved into one of Akashvani's prominent radio services, catering to listeners with a mix of information, analysis and entertainment. The channel carries regular news bulletins and headlines along with programs covering current affairs and issues of national importance. Some of its programs include popular shows such as Surkhiyon Mein, Spotlight, Market Mantra, Sports Scan and Countrywide, among others. While programs such as Aaj Savere and Parikrama provide listeners with news, current affairs and analysis in a magazine format, reflecting FM Gold's focus on combining information with engaging presentation.
3: World number one Arina Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2, 6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. And with that, we end this news bulletin.
5: Gaan কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold.
6: কিছু গান কিছু কথা, আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM Gold-এ। সুরেলা সফর, সুরেলা সফর, সুরেলা সফরে আজ ডিরেক্টর স্কাট, ডিরেক্টর স্কাট।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक मदद, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि परियोजना से भावनगर पारा में अतिरिक्त परिचालन क्षमता सृजित होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और रेल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा 4000 क्विंटल ही बनी रहेगी। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास

0: के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे की जांच नहीं करने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन की घटनाओं पर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को भी कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने आज कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्य के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकता। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मेट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं 840 मेट्रिक टन प्याज लेकर दूसरी मालगाड़ी चेन्नई पहुंच चुकी है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार एवं शासन में MA की डिग्री दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Alongside the 25th anniversary of Bishkek Declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. More from our correspondent.
0: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing

नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं वापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 5:15 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम खूबसूरत एक शाम

0: है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर
1: जी हाँ, चाय एंड क्लासिक्स है प्रोग्राम का नाम, जहाँ एक अलग ही दुनिया में हम चलते हैं। ये कैसा प्रोग्राम, तो आज है 1 तारीख। जी हाँ, सितंबर आ गया और यादें भी। तो नमस्कार। शाम का एक अपना ही अंदाज होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है तो सड़कों पर लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने भी लगते हैं और दिन का शोर थोड़ा कम होने लगता है, तब इंसान के पास एक चीज सबसे ज्यादा आ जाती है, अपने आप से मिलने का वक्त। और शायद इसी वक्त बिना किसी इनविटेशन के कुछ पुरानी यादें भी हमारे पास आ बैठती हैं। आज एक नया महीना शुरू हुआ है, सितंबर। कैलेंडर का एक और पन्ना पलट गया है। कल तक अगस्त था, आज सितंबर है। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें बहुत छोटी होती हैं, फिर भी उनके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। एक नई तारीख, एक नया महीना, एक नया पेज। लेकिन क्या हर नए पेज सच में नई शुरुआत होता है, या फिर हम हर नए पेज के साथ कुछ पुराने लफ्ज, कुछ पुराने चेहरे और कुछ पुराने कहानियां अपने साथ ले आते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन यादें जो होती हैं वो कभी कभी पीछे से हमें आवाज देती है। तो ऐसी कौन सी यादें हैं आपके जीवन में जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचती हैं? शेयर कीजिए हमें, फोन लाइंस खुली हैं। और फिलहाल के लिए चलिए सुन लेते हैं गाना।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें.
2: Begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: तो सवाल यही था कि जिंदगी के साथ साथ हम आगे तो बढ़ते रहते हैं, हर एक दिन, हर एक साल, हर एक महीना गुजरता रहता है, पर ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको कभी न कभी पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती हैं. तो हमारे जो पहले कॉलर हैं वो जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ. चलिए देखते हैं कौन है. हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जायंट क्लासिक्स में.
4: नमस्कार, निशाकर धौर, हम तो जगदत्री टोला हावड़ा से बोल रहे
3: हैं. जी निशाकर जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
4: एकदम सब ठीक ठाक है, बच्चा बच्चा सब ठीक है.
3: चलिए बहुत अच्छी बात है. बताइए आपके जीवन में ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको पीछे की ओर खींचती है?
4: আমি 18 বছর ব্যাকে যদি ফিরে যাই পিছনে, আমি যেখানে কাজ করতাম সেইখানে আমার একটা সময়সীমা থাকতো, আর সেখানে শুধু কাজের টেনশন থাকতো, আর কিছু থাকতো না. এখন অনেক টেনশন মাথায় চাপে পড়ে চেপে পড়েছে, যার জন্য সে পিছনের দিনটাকে এখন মনে পড়ে খুব.
3: ओके, मतलब आप चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप उस जीवन को फिर से जीना चाहेंगे?
4: एकदम एकदम एकदम.
3: सभी को लगता है ऐसा, है ना? जब हम बड़े हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं वो शांति से जो हम जिया करते थे, जब लगता था कि हाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, होमवर्क करना है, ये करना है, लेकिन अभी लगता है कि शायद वही लाइफ सबसे अच्छी थी हमारे लिए. चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच. और बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? ठीक है, चलिए चलिए सुनते हैं हम सब. बिल्कुल अच्छे से रहेगा, वापस मुलाकात होगी आपसे.
4: थैंक यू.
3: तो ये थे निशाकर जी. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं इनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना फिल्म दोस्ती से.

0: दोस्तों आज सितंबर की पहली शाम है और सितंबर के नाम में भी एक दिलचस्प कहानी छुपी है। आज सितंबर साल का नौवां महीना है लेकिन इसका नाम लैटिन शब्द में सेप्टम से आया है। इसका मतलब होता है सात। पुराने रोमन कैलेंडर में सितंबर साल का सातवां महीना हुआ करता था। वक्त के साथ कैलेंडर बदला, महीने अपनी जगह बदलते गए लेकिन सितंबर का नाम वही का वही रह गया। तो सोचिए, जगह बदल गई, वक्त बदल गया, कैलेंडर बदल गया लेकिन नाम नहीं बदला। क्या हम सब भी कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है? फिलहाल इसका जवाब हम अपने अगले कॉलर से पूछेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्कार पाविया जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जायन क्लासिक्स में।
1: जी शुक्रिया पाविया जी, मैं मोहम्मद नासिर दरभंगा बिहार से।

0: जी नासिर जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है? और दरभंगा का हाल चाल कैसा है?
1: जी पापिया जी, घर परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और दरभंगा बिहार का भी हाल चाल ऐसा है कि सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ अभी तक मानसून जो होना चाहिए वो मानसून अभी तक नहीं आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, दो चार पांच दिनों से अगर मैं बोलूं तो मानसून का शक्ल बना हुआ है, लेकिन जो बारिश होनी चाहिए, बिहार वासियों को जो बारिश मिलनी चाहिए, वो बारिश अभी तक हम बिहार वासियों को, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, दरभंगा जिला की नहीं, तो अभी तक वो देखने के लिए मिला नहीं। लेकिन जिस तरह से मानसून अभी बना हुआ है बिहार में, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले एक दो दिन में वो मौसम बन जाएगा और बारिश का मजा हम लोगों को भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा और बारिश का जो फायदा है वो भी जाने के लिए मिलेगा हम लोगों को।
0: एकदम बिल्कुल मैं भी मतलब बोलूंगी भगवान से कि जल्दी से जल्दी जो बारिश का माहौल बना हुआ वो बारिश हो ही जाए आखिर का।
1: शुक्रिया पापिया जी।
0: तो बताइए नासिर जी कि आप जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको पीछे की ओर खींचती है अपनी जिंदगी में?
1: पापिया जी, ये यादें तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और पीछे बहुत सारी यादें छूटी हुई है, लेकिन उन तमाम यादों में से मैं एक यादें हैं जो मेरा कोलकाता बंगाल से ही रिलेटेड है, मैं उन यादों को आज मैं तमाम सुनने वाले के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये 1989-90 की एक बात है कि जब मैं पहली बार कोलकाता गया था तो उस समय मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ लोकल ट्रेन जो चलती है वो बहुत स्पीड में चलती है और थोड़ी देर के बाद ही वो हॉर्न देने के बाद जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो मैं अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ गया था और मुझे आज भी याद है पापिया जी, मैं अक्सर कलकत्ता जाता हूँ, अभी मैं पिछले एक आध हफ्ता के बाद फिर आने वाला हूँ। तो मैं जब हावड़ा में मैं चढ़ा था लोकल ट्रेन में, तो मेरे बड़े भाई जो थे वो ट्रेन में उठ गए और मैं भी उनके पीछे था, उठना चाह रहा था, लेकिन तब तक ट्रेन खुल गई और मैं हावड़ा स्टेशन में छूट गया। और मैं पहली बार गया था, मुझे कुछ पता आइडिया ही नहीं था कि मैं अब भाई मैं अपने बड़े भाई को लेने के लिए कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो मुझे एक आइडिया था कि बाली में मेरे बड़े भाई उतरे होंगे तो मैं बाली चला जाता हूँ, लेकिन इत्तफाक है कि जब मैं दूसरा लोकल ट्रेन पकड़ करके गया तो बाली नहीं उतर करके मैं बेलूर उतर गया पापिया जी। जी, और इस तरीके से सुबह से शाम तक मैं अपने बड़े भाई को तलाश रहा था और बड़े भाई मुझे तलाश रहे थे, यहाँ तक के क्या कहते हैं कि स्टेशन पे अलाउंस भी करवाया गया। और इत्तफाक है कि मुझे उस समय बंगाली लैंग्वेज एकदम नहीं आती थी पापिया जी।
0: अच्छा।
1: तो मैं जब भी किसी लोगों से पूछता था तो पता, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं हिंदी में पूछता था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे, या फिर बहुत सारे लोग जो जवाब देते थे वो मैं नहीं समझ पा रहा था। तो ये यादें हमारी जुड़ी हुई कि मैं जब भी कोलकाता जाता हूँ अपने काम से या किसी भी चीज के लिए, तो वो यादें मुझे पीछे ले जाती है, उन दिनों को याद करा देती है कि वही जमाना था, एक टाइम था कि जब मैं आया था और यहाँ इस तरह से मैं मिसिंग हो गया था और काफी सुबह से शाम तक मैं जो इसी तरह से घूमता रह गया, उसके बाद लास्ट में जाकर के रात में लेट नाइट में मैं अपने बड़े भाई से मिल पाया था पापिया जी। ये कहानी है पापिया,
0: बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना बोल सकते हैं कि
1: जी, जी,
0: उस वक्त शायद आपको लगा था कि आप कितने परेशानी में हैं, लेकिन अब लगता है कि अगर वो परेशानी नहीं हुई रहती तो शायद आप वो रास्ते नहीं पहचान पाते।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, यही बात है।
0: तो नासिर जी कौन से गाना सुनना पसंद करेंगे बताइए?
1: आज मेरा गाना है पापिया जी साजन की सहेली फिल्म का है, जिसके लिए सबको छोड़ा उसने मेरे दिल को छोड़ा, वो साजन की सहेली किसी और की सहेली हो गई, ये गाने का बोल है पापिया जी। ये हम मैं भी सुनना चाहता हूँ और तमाम अपने सुनने वाले को सुनाना चाहता हूँ।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं। आपका
1: शुक्रिया।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। तो ये थे नासिर जी, इन्होंने शेयर की अपनी एक घटना, जीवन की बड़ी इंटरेस्टिंग घटना, और ऐसी घटनाएं हम में से कितनों को हम फेस करनी पड़ी होगी, है ना? तो ऐसी घटनाओं के साथ आइए, फोन लाइंस खुली हुई हैं, और फिलहाल के लिए उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना चलिए सुन लेते हैं।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर
2: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए चाय एंड क्लासिक्स के साथ. फिलहाल चलिए हमारे अगले कॉलर जो है वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कौन है. हेलो,
3: गुड इवनिंग पापी जी.
2: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय एंड क्लासिक्स में.
3: मैं मोनिरुद्दीन लक्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण शाखा हावड़ा से.
2: जी मोनिरुद्दीन दा, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
3: अच्छा है.
2: चलिए बहुत अच्छी बात है.
3: और आप कैसे हैं? ठीक है. मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी तो पढ़ाई किया, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है
2: जी.
3: एक मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ.
2: बिल्कुल बताइए.
3: गेम का टाइम एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. जिस इंसिडेंट के मुझे आज भी इंस्पिरेशन बढ़ाता है
2: जी.
3: मैं हमारे स्कूल में गेम का टाइम जो एनुअल गेम है तो मैं देखने गया. गेम पार्टिसिपेट में सिर्फ जो गेम कंपटीशन होता है एनुअल, तो मैं देखने गया.
2: अच्छा.
3: बहुत सारे इवेंट है, तो मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया.
2: अच्छा.
3: लेकिन एक्सीडेंटली हमारे जो स्कूल का हेड टीचर मुझे पहचानता है, लाइक क्योंकि मैं स्कूल में बराबर पास करता है.
2: अच्छा.
3: हमारा फॉर्म का नहीं है मैंने एक्चुअली पास है, तो वो इसलिए मैं जानता है मैंने खास करके. तो हमारे वो मुझे बोला कि तुम ये इवेंट में पार्टिसिपेट करो. वो जो इवेंट है वो है ऑब्जर्वेशन टेस्ट जिसको बोलता है.
2: अच्छा.
3: मैंने कुछ दौड़ के बाद कुछ सामान देखा और कुछ दौड़ के बाद वो लिखता है जिसको बोलता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट
2: जी.
3: जो पहले आएगा वो लिखने के बाद तो फास्ट होता है, तो उसी इवेंट में मैं फास्ट हो गया.
2: अच्छा. ओके.
3: तो ये बात मैं बाद में सीखा है हमारे इंग्लिश टीचर हिमांश कुमार घोष के मुंह में
2: जी.
3: जो मैं प्रिपेयर ना होकर जो पार्टिसिपेट करता है और जीतता है इसको बोलता है इम्प्रॉम्प्टू कंपटीशन.
2: ओके.
3: ये इंटरव्यू टू कॉम्पिटिशन तो मिली आज, तो बाद में मैं सीखा है, लेकिन वो दिन मैं नहीं सीखा है जो मैं जीता था. तो आज मुझे इंस्पिरेशन देता है ये कारण से जो हमारे जो प्रिपेयर्ड होना चाहिए.

0: ये शहर कम में के नहीं,
1: बिल्कुल
0: हमारे मन सख्त है, हमारे इच्छा शक्ति है, हमारे माने अंदर से कुछ कर सकते माने मन है तो वो जरूर हम जीतेगा।
1: एक बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
0: इम्प्रॉम्प्टू कॉम्पिटिशन,
1: और ये इम्प्रॉम्प्टू कॉम्पिटिशन पूरी जिंदगी लड़नी पड़ती है।
0: आपको सभी को लेना चाहिए, मैं छोटा सा सीखा है लेकिन ये इसका मीनिंग मैं बड़ा होकर सीखा है। इम्प्रॉम्प्टू कॉम्पिटिशन का मीनिंग ये क्या है, जिस वक्त मैं जीता है उसी वक्त मैं नहीं जानता इसका मीनिंग।
1: थैंक यू सो मच,
0: होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर
1: एकदम। थैंक यू सो मच मोनुद्दीन दा, बताइए तो आपने इतनी अच्छी जो घटना बताई और सीख दी उसके लिए आपको मैं गाना जरूर सुनाऊंगी आपका बोला हुआ, तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे बताइए।
0: हमारे पापिया जी है तो कुछ खास गाना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्रांति फिल्म का लता मंगेशकर ने कच्चा जिंदगी के ना टूटे लड़ी प्यार करने लड़ी वो घड़ी,
1: ओके
0: ये गाना प्लीज सुना दीजिए।
1: ठीक है, चलिए चलिए सुनवाते हैं आपको ये गाना। ओके
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों जिंदगी हमें कितनी जगहों पर ले जाती है ना, बचपन का घर छूट जाता है, स्कूल छूट जाता है, दोस्त अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, हम खुद भी बदल जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक हिस्सा ऐसा होता है जो वहीं रह जाता है, वही बच्चा, वही दोस्त, वही सपने, वही डर, वही किसी अपने को खो देने का एहसास और वही किसी पुरानी याद पर अचानक मुस्कुरा देना। तो सितंबर की पहली शाम शायद हमें यही याद दिलाती है कि वक्त कभी रुकता नहीं, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं लेकिन हर पलटते हुए पन्ने के पीछे कहानी आ ही जाती है। अब भी जरा सोचिएगा। फिलहाल के लिए चलिए सुन लेते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी क्रांति फिल्म से।

0: तो दोस्तों, सितंबर की पहली शाम शायद हमें यही याद दिलाती है कि वक्त कभी रुकता नहीं। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन हर बार पलटते हुए पन्ने के पीछे कहानी रहती है। तो मैंने कहा था कि अभी सोचिए, और ऐसे में सोचते सोचते हमारे जो अगले लिसनर हैं वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: है, नमस्ते जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: बिमल मित्र राजघाटपुरी से बोल रहा हूँ।
0: जी बिमलदा, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है? और काम कैसा चल रहा है?
1: काम करता हूँ और आपका गाना सुना, आप जो गाना बजा रहे हैं गाना सुना रहा है। और देखिए दीदी, मैं तो साड़ी का काम करता हूँ, सारा दिन तो घर पे ही रहता हूँ, घर पे ही मेरा काम है
0: जी।
1: धनीखाली साड़ी बोलता है ना, मैं धनीखाली साड़ी का काम करता
0: हूँ। अच्छा अच्छा।
1: देखिए, आपसे गाना सुना है, बहुत अच्छा अच्छा गाना सुना रहा है।
0: थैंक यू।
1: और देखिए, मैं तो स्कूल का जमाना था, जो पुरुष होता है ना उसे देता दिया था। और हम एक तो बांग्ला थी बोली, मैंने स्कूले, हाँ तखन बांग्ला मैंने स्कूले देया हतो। और ব্যাপার হচ্ছে আমি লেখাপড়া খুব বেশি দূর দিদি করতে পারিনি, মানে আমাদের আর্থিক অবস্থা অতটা সচ্ছল ছিল না বলে। আর অল্প বয়সে আমাকে কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে, আর তখন সেই সব খেলায় নাম দিতাম। মোটামুটি খেলাগুলো এখন, মানে এখন যে স্কুলে খেলা হয় দেখলে ইচ্ছা মানে জাগে, কিন্তু তো সেই সময়টা তো আমরা পেরিয়ে দীঘাগার হয়ে ওঠে না। এই এখন আপনাদের অনুষ্ঠান শুনছি, কাজের মাধ্যমে আছি, এই চলছে আপনাদের আশীর্বাদে।
0: আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর বতাই, তো আপ জেসে মানে পুছা থা কি কোন সি এসি ইয়াদে হ্যায় জিসকে সাথ আপ ওয়াপস সে জুড়না চাহেঙ্গে, ऐसी कौन सी यादें आप छोड़ के आए?
1: हमने जो पुरानो सेटा हो स्कूल लाइफ जो छिल বন্ধুদের সঙ্গে যে খেলাধুলার ব্যাপারটা বা একসঙ্গে মানে একটু পুরোপুরি করা এইসব, তখন তো একটা, এখন যেমন ফোনে আসক্ত হয়ে গেছে বাচ্চারা, তখন তো ফোনের ব্যাপারটা ছিল না। তখন আমাদের স্কুল মানে ছুটির সময় আমরা কি খেলতাম, মানে নানা রকম খেলা হতো, লুকোচুরি খেলা, চড়াই খেলা, নানা রকম খেলার ব্যাপারটা ছিল। এখন তো সেই ব্যাপারটা দিদি আর নাই, এখন তো সব ফোন সারাদিন ফোনেতেই পড়ে থাকে বাচ্চারা, গেম খেলতে ব্যস্ত। সেসব সময়গুলো অনেকটা মনে পড়ে, যখন স্কুলে যা দিয়ে যাই মনে পড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সেসব আলোচনাও হয়।
0: কোন সা গানা শুনা চাহতে আপনি পুরানি ইয়াদো কো ইয়াদ করতে হবে?

0: आपका पार्टी राम लक्षण का गाना हो तो आप सुना लीजिए।
1: ओके ठीक है ठीक है, चलिए
0: नमस्ते,
1: थैंक यू सो मच। तो ये थे विमल दा हमारे साथ कुछ यादों के साथ, उन्होंने अपनी बातें शेयर की। तो लगता है ना दोस्तों, जिन चीज़ों के बिना हमें लगता था कि ज़िंदगी रुक जाएगी, आज उनमें से कई चीज़ें सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुकी हैं हमारे लिए, और शायद जो आज हमारे पास है कल वो भी एक याद बन जाएगा। इसलिए कभी कभी ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं चाहिए, उसे महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट कब याद बन जाए पता ही नहीं चलता। तो सितंबर का नाम सुनते हैं, बहुत से लोगों को अपने स्कूल के दिन भी आ जाते होंगे। सुबह जल्दी उठना, स्कूल की यूनिफॉर्म, बैग का बोझ, होमवर्क का टेंशन, टीचर की डांट और लंच ब्रेक का इंतज़ार। बस उस वक्त हमें लगता था कि स्कूल की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, होमवर्क ख़त्म हो जाए, जल्दी बड़े हो जाए। लेकिन ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, जब हम बच्चे होते हैं तब बड़े होने की जल्दी में होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी दिल करता है कि बस एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए फिर से बच्चे बन जाए। चलिए फिलहाल समय बोल रहा है कि हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तो फिर अगला गाना भी सुनना तो बनता ही है। तो चलिए सुन लेते हैं, फिर वापस से मुलाकात होगी ठीक 6:10 पर आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, 100.1 FM गोल्ड के परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह सब्जी वाले भैया, ऑफिस के बाहर चाय की दुकान, सड़क किनारे फल बेचने वाला मोची या छोटी रेहड़ी पटरी की दुकान, ये सब हमारे शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्यों, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की खास योजना भी है? इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यानी पीएम स्वनिधि। दोस्तों, ये योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई। उस समय कोविड-19 महामारी के कारण कई स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे सड़क किनारे कारोबारियों की रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। ऐसे लोगों को अपना काम दोबारा शुरू करने और बढ़ाने के लिए औपचारिक वित्तीय सहायता की जरूरत थी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई। आज इस योजना का उद्देश्य सिर्फ लोन देना नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी है। पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन चरणों में उपलब्ध कराया गया। पहले चरण में 15,000 रुपए तक, दूसरे चरण में 25,000 रुपए तक और तीसरे चरण में 50,000 रुपए तक, निर्धारित पात्रता और पुनर्भुगतान शर्तों के आधार पर। समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों के लिए ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। योजना में डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री स्वनिधि को पुनर्गठित लेंडिंग व्यवस्था को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई रेहड़ी ठेला, फल सब्जी की दुकान, चाय की दुकान या अन्य पात्र स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते हैं तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें, क्योंकि सही जानकारी कभी कभी सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो किसी के छोटे कारोबार को नई शुरुआत देने का अवसर भी बन सकती है। तो ये थी परियोजना प्रस्तुति।
0: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
1: तो दोस्तों, चाय एंड क्लासिक्स के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से चाय एंड क्लासिक्स में आज बात हो रही है एक नए महीने की, एक नई शुरुआत की। पर जो यादें हैं वो हमारे पीछे जरूर आ जाती है, हमें बुलाती है। फिलहाल इसी बारे में बातें हो रही है, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, लेती हूँ फोन कॉल फिलहाल। तब तक आप सुनते रहिए हमारा अगला गाना।

0: possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दोस्तों आज हमारे पास शायद पहले से ज़्यादा चीज़ें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या हमारे पास पहले से ज़्यादा वक्त है? शायद नहीं। पहले दोस्त घर के बाहर मिल जाते थे, आज मिलने के लिए कैलेंडर देखना पड़ता है। पहले किसी से बात करने के लिए बस उसके घर चले जाते थे, आज किसी को फ़ोन करने से पहले भी सोचते हैं पता नहीं कहाँ बिजी होगा। पहले ज़िंदगी में लोग ज़्यादा थे और डिवाइसेस कम, और आज डिवाइसेस ज़्यादा हैं और वक्त कम। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, एक पुरानी याद, एक पुरानी तस्वीर, एक पुराना मैसेज या किसी पुराने दोस्त का नाम, बस इतना ही काफ़ी होता है हमें कई साल पीछे ले जाने के लिए। कभी कभी किसी पुराने दोस्त का नंबर फ़ोन में दिख जाता है, नंबर सेव होता है लेकिन बात नहीं होती। हम सोचते हैं कल कॉल कर लेंगे, फिर कल आता है, फिर एक और कल, और धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं, लेकिन क्या पता सामने वाला भी कभी कभी आपको याद करता हो। शायद वो भी किसी पुरानी फोटो को देखकर सोचता हो, यार कितना अच्छा वक्त था। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिन्हें खत्म करने के लिए कोई लड़ाई नहीं होती, बस बात करना कम हो जाता है, फिर मिलना कम हो जाता है, और फिर एक दिन पता चलता है कि सालों बीत गए। फिलहाल अपनी ऐसी ही एक कहानी लेकर हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
2: जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शायन क्लासिक्स में।
2: जी आपको शुभ संध्या, प्रणाम, नमस्कार।
1: आपको भी प्रणाम नमस्कार हमारी तरफ से। बताइए कैसे हैं, नाम बताइए सबसे पहले तो।
2: जी मैं पारस पंडित चुचड़ा हुगली से बोल रहा हूँ।
1: जी पारस जी कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
2: जी दीदी आपके आशीर्वाद से सब घर परिवार में सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है।
1: चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहिए, हंसते बोलते रहिए बस, और क्या।
2: जी धन्यवाद दीदी, आपका कॉम्प्लीमेंट दिल गार्डन गार्डन कर गया।
1: जी थैंक यू सो मच। बताइए कौन सी ऐसी पुरानी यादें हैं जिससे आप आज भी जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, लेकिन वो यादें पीछे कभी कभी खींच देती है आपको?
2: जी दीदी हम लोग तो सभी वर्तमान के ही सोचते हैं और भविष्य को भूल जाते हैं।
1: जी
2: मैंने भविष्य को चीज सोचते हैं और भूत को भूल जाते हैं। तो यादें तो रह ही जाती है, दोस्तों के साथ बिताए हुए समय, मान लीजिए सुबह का टाइम में चार दोस्त मिलकर चाय पिए, बातें किए, यादें रह गई। और कुछ दोस्त अभी है, कुछ दोस्त नहीं भी है, और सभी अपने अपने सांसारिक धर्मों में लिप्त है।
1: जी।
2: तो वो सब यादें अब पुनः लौट कर, मतलब वो सब दिन अब पुनः लौट कर नहीं आ पा रही है। एक साथ मिलकर बैठकर चाय पीना, और विद्यार्थी जीवन में बस्ते का बोझ, पढ़ाई का बोझ, टीचर के डांट, ये सब यादें तो रह ही जाएगी। और कुछ टीचर अभी हैं, कुछ नहीं है, उन सबको यादें लेकर ही चलना पड़ता है। तो अब वो बचपन की यादें नहीं रहे, अब अपने बच्चों में उस बच्चपन को देखते हैं, बच्चे किताब के बोझ के साथ दबे हुए हैं, पढ़ाई का पेपर है, बस यही सब लेकर जिंदगी जी रहे हैं।
1: ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी का ना काम है आगे बढ़ते रहना। और हम कभी कभी जब थक जाते हैं तब उन पुरानी यादों को लेकर थोड़ा सा टटोलते हैं, तो हमारी थकावट भी,
2: पुरानी यादें आंखों को नम कर जाती है।
1: जी और हम खुश भी हो जाते हैं वो बीते दिन।
2: हाँ, जरूर जरूर।
1: चलिए
2: सुख और दुख लेकर ही तो जीवन है।
1: एकदम एकदम। चलिए पारस जी थैंक यू सो मच, वापस मुलाकात होगी आपसे। ओके और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
2: गाना बंजारन का एक गाना सुना दीजिए।
1: ठीक है चलिए सुनते हैं,
2: और ये गाना मैं अपने बीवी को डेडिकेट करना चाहता
1: हूं। ओके ओके चलिए।

0: और सभी श्रोताओं को
1: थैंक यू सो मच
0: जी। धन्यवाद दीदी,
1: धन्यवाद, वापस मुलाकात होगी
0: जी जरूर।
1: तो ये थे पारस जी, और आज 2 सितंबर की पहली शाम पर अगर आपके फ़ोन में किसी पुराने दोस्त का नंबर है जिसे आप बहुत दिनों से बात नहीं किए, तो शायद एक मैसेज भेज दीजिए। बहुत लंबी बात ज़रूरी नहीं, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि याद है, कभी कभी दो शब्द पूरी एक दुनिया वापस ज़रूर ले आते हैं। और इन्हीं यादों को याद करते हुए हम करीबन प्रोग्राम के एंड तक पहुँच चुके हैं, है ना। वापस से चायन क्लासिक्स में तो मुलाकात होगी ही किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ, पर अभी वापस से मुलाकात होगी प्यार भरे नगमों के साथ छाया लोक में 7 बजे से 7:02 एग्जैक्टली एफएम रेनबो पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.1 एफएम गोल्ड। फिलहाल के लिए पारस जी का एक गाना चलिए सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aap sabka swagat hai. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: जी शुक्रिया. थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट. निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ. वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया. कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आयुष श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसल कर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़क कर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड मार्जिनली लोअर टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 13 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,944। द निफ्टी ड्रॉप्ड 25 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,056। In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 1.4%, while the small-cap 100 index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions, but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत ITC 4%, HCL टेक 3.2% और इन्फोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,000

0: 563 companies declined, 1,760 advanced, and 236 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर 94.95 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर शर्मा, आज अगर हम आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं.
2: देखिए, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
1: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है, या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है. तो एक कोई मूव, जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
1: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा. और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है. और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है, जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं. अदरवाइज जो देखा जाए, अगस्त के महीने में काफ़ी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआईस का काफ़ी फ्लो आया है. तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की, उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहूँगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स.
1: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है.
2: देखिए, उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ी बढ़त भी ली थी, तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की, जैसे मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक, 2000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1,000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 23,000-24,000 के बीच में मार्केट जब ऊपर जाती है 24,500 के आसपास, तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स. और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स. तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है, जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स हों, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कंप्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसेलरेट हो या डीप करेक्शन में जाए, ऐसा भी नहीं है.
0: ओके, डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%. Even that did not translate into a clear rally today. What does this tell us about how markets are pricing growth versus risk today?
2: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth, because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments, and GDP is on the basis of our strong fundamentals. But in the long run, both are very correlated, because when GDP grows significantly, like during the last 4-5 years, we observed that GDP is growing more than 7% on an average, either 7.5% on an average, and the markets are also in the same move. Markets are increasing significantly year after year. But in the shorter period, on the day-to-day basis, or weekly movements, or the monthly movements, these are not observing, because as I mentioned to Prachi, that when the markets go up, then they

0: ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग पार्ट ऑफ अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी.
1: सो इफ यू वर टू लुक एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इफ इरानियन बैरल्स आर फर्दर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द मार्केट, हाउ लार्ज एंड इंक्रीमेंटल सप्लाई शॉक are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
0: I think the major markets, the major emerging economies are in the major limelight. Actually, they are the stakeholders in the buying and selling segment. But the monopolistic powers sometimes used and are in the their vested interests, that is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
2: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है. आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला. डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं. क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
0: जी बिल्कुल प्राची, देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग. और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है. तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर आल्सो वेरी स्ट्रांग. हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग. अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है. और इसके अलावा जो जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है
2: जी.
0: और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है. तो ये जो जुलाई से सेप्टेम्बर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. यहाँ से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली,
2: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है.
0: हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए.
2: जी. आगे बढ़ते हैं श्रोताओं. भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई. आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया. मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा. उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण PMI अपने दीर्घकालिक औसत 54.2 से नीचे आ गया. कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई. डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है. तो ये किस तरीके से

0: इम्पैक्ट करती है इसको?
1: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है, तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
0: ऊपर है जी।
1: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 Finance Ministers meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient, and our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible, and this is the effect of effective and meaningful reforms and taken by the committee. Yeah.
0: आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों में है। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स लगभग 1% और लंदन का फुटसी 0.5% से अधिक नीचे कारोबार करता नजर आया।
2: US stock markets ended lower yesterday, weighing down by rise in crude oil prices and higher US treasury yields. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.7%, the S&P 500 dropped over 0.3%, and the Nasdaq Composite fell 0.1%. Meanwhile, the US indices wrapped up August with gains despite geopolitical tensions in West Asia. The Nasdaq Composite Index advanced 3.9%, the S&P 500 gained 2.6%, and the Dow added 1.3%. Now, Dr. Sharma, how are the U.S. rate expectations and Fed commentary feeding into emerging market risk premium, especially for India, in this oil shock environment that we are in?
1: Mr. Lake, because their inflation still remains in the sticky zone and high also at 3.4%. So, and their this manufacturing sector, though showing signs of some strength, but in the long term is not that much sustainable because demand trajectory is not that much strong in the US, and they are facing the slowing growth and high inflation. So going forward, I would say they have to adopt a rational policy environment to support firstly the growth, and second to subside the this inflation number, to address the inflation number. So I think the US economy is in a very volatile situation, not a stable situation actually, because of the West Asia impact on the economy and their increased expenditure on war-related expenditure, and also the consumption segment within the country because of the high tariffs.
2: Okay. Global crude oil prices rose today as the resumption of fighting between the US and Iran in West Asia renewed fears of supply disruptions. Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if U.S. pressure on Iran intensifies?
1: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
2: Okay.
1: Yep.
0: आगे बढ़ते हैं. सराफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 230,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. डॉक्टर शर्मा, सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की, हम लोगों की, तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी.
1: देखिए प्राची, जो सोने के दाम हैं और या चांदी के दाम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में. अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी, और फिर वो 4,000 को भी टच किए. आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है. लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर, that will be at around somewhere between 4500 to 4700.
0: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से, अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें.
1: देखिए जो factors हैं वो एक तो buying है, strong buying by the central banks, and second जो global uncertainties हैं, and that create interest for the safe haven. लेकिन इसमें fluctuation आती है जब dollar मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि dollar भी बहुत तेज गति से fluctuation लेता है because of the West Asia crisis. तो gold के prices भी उसी तरीके से move करते हैं. लेकिन इसका average जो रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि $4,500-$4,600 पर ट्राई ऑन्स इस साल में.
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए. और
2: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस इन अगस्त दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्स. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और इन मामलों में जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहद प्रदर्शन सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। योजना को 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के समन्वय से लागू किया जा रहा है। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment,

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को

0: प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों

0: की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
3: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
4: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
3: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from Centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि

0: इकाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization SCO to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEA said address

0: আর গেছি কি, জীবনের দেশেই গেছি, তো সেই খবরটাই পাওয়া বাকি। ওরা দুজনেই আমায় বললেন পাঁচ মেশালি প্রোগ্রামটা ওই অমুক দিন তোকে করতে হবে। সাইজি বললেন সর্বজীয় তাই তুমি ওটা পাঁচ মেশালি করো, এবং পাঁচ মেশালি সাধারণত দুজন মেয়েকে দেওয়া হতো, কারণ কি করে ঘর গুছবে, কেমন করে এটা সেটা রান্নার এক্সপেরিমেন্ট কি করে করে, জামা কাপড় অমুক টুসু, আমি এটা কি করবো, এটা আমার প্রথম প্রোগ্রাম। তখন সাথী দিই অত্যন্ত গভীরভাবে সে তো তোকে লিখে দেওয়া হবে, তুই বলবি, আর গান ফান ইত্যাদি ইত্যাদি, গাছ টাছ নিয়ে কি গান, সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ, সেটা বাজাবো লোকের কাছে মনে হয় আমি সুন্দরবনে বৃক্ষরোপণের কথা বলছি। যাই হোক, একটা দিন এই এত বছরে একটা দিন আমার মনে হয়েছিল কিছুতেই সময় মানে কাটে না, সময় যখন আর কিছুতেই আমার সময় কাটছে না। তো এরপর দেখো অনেক কিছু আছে, অনেক অভিজ্ঞতা আছে, সে বলতে গেলে তো বিশাল ব্যাপার। বিশু রয়েছে, তো বিশুর সঙ্গে আমি অনেকগুলো প্রোগ্রাম, যেমন তোমার সাথে সুপ্রিয় কত সে ছেড়ে দাও ওটা বলে লাভ নেই, বিশুর সঙ্গে আমি অনেক প্রোগ্রাম করেছি এই এফএম গোল্ডে। তার মধ্যে একটা জন্মাষ্টমীর একটা প্রোগ্রাম আমাদের পড়েছিল, তো সময়টা আপনারই জন্মাষ্টমী সংক্রান্ত একটা বিশু কিছু সবাই শ্রোতাদের জন্য বিষয় দাও, বিশু বিষয় দিয়েছে, শোনো বিশু বিষয় দিয়েছে মানব প্রেমী কৃষ্ণ প্রেম। এবার আপনারা সবাই হোয়াটসঅ্যাপে লিখুন আমাদের এই নম্বর, এই মানব প্রেমী কৃষ্ণ প্রেম লিখতে লিখতে একজন ওইখানে লিখে দিয়েছেন, হ্যাঁ ঠিকই মানব প্রেমী কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ প্রেমেরই পিকচার, মোবাইলে টাইপ করতে গিয়ে তারাগুলো তারাগুলো করে ছয় পাঠান ছয় পাঠান ছয় পাঠান। আর বিষ্ণু
1: শিবদা আর তো শুনতে পাচ্ছি না গল্প, বাকিটা কবে দেখা হবে জেনে নেবো। হ্যাঁ এদিকে ঘড়ি বলছে এখনই ছুটি নিতে হবে।
0: হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার সকলকে শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানি।
2: হ্যাঁ এবং 50 বছরে আবার দেখা হবে।
0: হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যদি থাকি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। শুভরাত্রি সকলকে,
1: আমরাও ছুটি নিলাম আজ অনুষ্ঠান থেকে।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
4: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ईसीआई नेट पर सम्मेलन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई शहरों में आवासीय इमारतों और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
6: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
5: The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan yesterday. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has chaired a roundtable on ease of doing business to scale India's data center ecosystem in New Delhi. In a social media post, he yesterday said, during the roundtable, there were excellent discussions on streamlining regulations and strengthening digital infrastructure with key stakeholders, including data centers and hyperscalers, cloud providers, power producers and equipment suppliers. He said that with India's strong growth, digital capabilities and investor-friendly ecosystem, under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, India aims to become the world's preferred destination for data centers. Department of Food and Public Distribution Secretary Sanjeev Chopra has reviewed the key issues relating to procurement, public distribution,